0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

অনেক রুগীকর্ত রকমের তোমারই সাধক নম্বর এটিম গণের সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহরু তপাইলে আফ্নো সওয়ারী সাধনকো বার্ষিক রূপমা বুঝাউনু পর্ने सवारी कर नवीकरण दस्तुर लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेर्नका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर कर प्रिन्ट माग्न बैंक भाउचर गर्न अघि सवारी कर तथा दस्तुर एकिन गर्न तथा कर बुझाएपछि प्राप्त हुने बीमा आफूले बुझाएको करको रकम र आफ्नो सवारी नम्बर एकिन गर्न हुन यस्तै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय पिरात।

स्मार्टली वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभालाई पहचान करी उजागर गर्न मदद गर्दै आएको छ। न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुन वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसीपाती संपर्क नंबर 9803623 82 9803623 87।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन चोकमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भद्भदो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा।
2: संपर्क नंबर 0375902222 9852988022 र 9842880300।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उपलब्धता को मिलन चुकिया
1: हुंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङको दिक्केल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथै सर्भिसिङ सेवा
2: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिङ गरे भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भुजन ओखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852988002 र 9842803000

0: सोनु FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Studio FM. In studio time.
2: Studio. News report 2 PM.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: जिम्मेवारी असंसद्य नागरिक को परिचय दिन बाल बालिका को सुरक्षा तथा संरक्षण सब को जिम्मेवारी असंसद्य नागरिक को परिचय दिन
1: अस्ट्रेलियन एड अस्ट्रेलियन हिमालयन फाउंडेशन को सहयोग में रूप नेपाल द्वारा जनहित में जन संदेश।

दरखास्त विद्यालय में सूची दर्ता कर गार दुई हजार उन्नाईस @gmail.com में ईमेल कर पठान सकने थप जानकारी को संपर्क नंबर प्रधान अध्यापक विनोद सिंह तामाङ 98 42 96 53 संस्था प्रतिनिधि डिरेक्टर और पार्टनरशिप एंड गवर्नेंस शांति शेर्पा 98 51 18 73 79 संस्था प्रतिनिधि एजुकेशन सपोर्ट लीडर छिरिंग तामाङ 98 51 17 43 81 श्री गार्मा माध्यमिक विद्यालय सूर्य किसकुंड नगरपालिका सुरुखुम्बु।

0: মুক্তিপ্রাপ্ত রকম তোবারী সাধক নগর একিনগড়ের সম্বন্ধে স্থানা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহর তপাইলে আপনার সবারী সাধনকে বার্ষিক রূপমা বুঝাউন পর্ সবারী কর নবীকরণ বস্তু লগায়ত অন্য কর সম্বন্ধে বিতরণ হেঁকা সম্বন্ধিত ইয়াতায়াত কার্যালয় গর কর প্রিন্ট মান্য ব্যাঙ্ক ভোচার গর্ন অগি সবারী কর তথা বস্তু একিন গর্ন তথা কর বুঝায় পছি প্রাপ্ত হুম বিমা আপনি বুঝাইক কর রকম আপনি সবারী নম্বর একিন গর্ন এসেই সূচনা মারফত অনুরোধ করতে
1: প্রদেশ সরকার আন্তরিক মামলা তথা কানুন মন্ত্রণালয় বিরাট
2: मौसम सम्बन्धी सही सूचना प्राप्त गरौं सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिने र दिने गरौं मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण गरौं जीवन रक्षा गरौं
3: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
4: बालबालिकालाई लागू औषध दुरूपयोग गर्दछ
5: लागू औषध सामाजिक अपराध हो कोही कसैले सहयोग नगरौं बालबालिकालाई लागू औषधको प्रयोगबाट टाढा राखौं बालबालिकाको संगतमा ध्यान दिऊ लागू औषधबाट हुने हानि र कानूनी परिणामको बारेमा जानकारी दिऊ बालबालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौं बालबालिकालाई घरमा माया र समय दिने गरौं विद्यालयमै जीवन उपयोगी शिक्षा दिने गरौं बालबालिकाको सकारात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौं
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा सारी सन्देश

0: सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौं। मौसम तथा जलवायु सम्बन्धी सूचना लिनेर दिने गरौं। मौसम पूर्वानुमानको जानकारी नियमित रूपमा लिने गरौं। प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सचेत बनाऊ। जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौं। वन संरक्षण र वृक्षारोपणमा सक्रिय सहभागिता जनाऊ। ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ़ाऊ। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाऊ। वातावरण संरक्षण गरौं, जीवन रक्षा गरौं।
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: Straight to your heart. Solo FM 101.2 MHz.
1: कार्यक्रम आपनी बाधा अपनी धक्का के साथ में सागर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर एंड मोटरसाइकिल एक साथ सोनू दुधकुंडे नगर पालिका 0.0

0: ग्लास पोर्टल कम्प्यूटर प्रविधि चश्मा फिटिंग चश्मा एवं सनग्लास खरीद में 10% छूट दी विद्यार्थी ओपीडी में 30% व चश्मा खरीद में 20% छूट वृद्ध अपांग तथा असहाय साथ ही विद्यार्थी ओपीडी चार्ज में 30% छूट को व्यवस्था कर शनिवार व अन्य सार्वजनिक बिदा को दिन पनि बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म आँखा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध हुनेछ।
1: प्रोपाइटर दिनेश राई सम्पर्क नम्बर 9558870305 र 9816034213।
0: सुलुखुबु आँखा उपचार केन्द्र सुलुखुबु नगरपालिका नम्बर 5 सय

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा।
2: होंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
3: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङ को विक्टल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सपेन्स गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिङ गरे भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ ओखलढुंगा।
2: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852888022 र 9842803000।

0: उत्पाद हित बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चित्रमा
1: का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाई ओखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880022 र 9842803000

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंबू

0: सोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: 6 PM साँझ को 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बरामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू जो
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
1: राष्ट्र को स्थान किसान
2: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस

जीवनी रमणु ये संसार को जीता, कसई को हार तो कसई को जीता। उमंग कतई कहीं वेदना, बाकी अजय छ हम जागना। जागृति।

प्रस्तुत छ रेडियो नाटक श्रृंखला जागृतिको चौथो भाग। नाटक लेखन सुशली कला समूह पंचनगर नगरपालिका।

0: Ramsey? Hey, Ramsey. Ramsey? कहाँ गया ये बेवकूफ? रामसी? हे रामसी?
1: जी मैम सर।
0: कहाँ गया था? हाँ?
1: वो पान लेने गए थे मैम साहब।
0: ओ मैं तो भूल गई थी, लाओ पान।
1: लीजिए मैम साहब।
0: जाओ जाओ, और 104 नंबर जो कमरे वाली है ना, वो लड़की को बुला के लाओ।
1: अच्छा मैम साहब।
0: बेहुदा लड़की, मेरे धंधे को चौपट कर दी।
1: आ गई मैम साहब।
0: ओ लड़की, कल डॉक्टर आया था?
2: हाँ आया था।
0: डॉक्टर ने कुछ कहा?
2: नहीं।
0: अरे कहता भी क्या बेचारा। सुनो, अब तुम मेरे धंधे के लायक नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाना।
2: जी आप ये क्या कह रही है? इस हालत में कहाँ जाऊँ, मेरा क्या कसूर है?
0: अरे मैंने कहा ना, फराफर से निकल जा।
2: नहीं सर, ऐसा मत कहूँ, मैं घर जाने के लायक नहीं हूँ।
0: और तुम मेरे धंधे के लायक भी तो नहीं हो।
2: क्यों, कल तक तुम्हें बिल्कुल ठीक थी।
0: अरे तुम तो क्या जवाब चाहती हो, सुन सकती हो?
2: कहिए ना, मुझमें क्या कमी है?
0: डॉक्टर ने तुम्हारा ब्लड चेक करने के बाद मुझे ये बताया है कि तुम्हारे ब्लड में तो अच्छा भी पॉजिटिव है।
2: अच्छा ये पॉजिटिव? यानी कि मुझे एच?
0: हाँ हाँ एच हुआ है तुम्हें।
2: नहीं नहीं, मुझे एच नहीं हो सकता मैम साहब, के डी जी ने सब झूठ है।
0: रामसी?
1: जी मैम साहब।
0: इसको धक्के मार के बाहर निकालो।
2: नहीं हे भगवान।
1: चलो चलो बाहर करो।
2: नहीं सर, मुझे मत निकालो।
0: बेवकूफ लड़की, एक एक लाख रुपए दे के रख ली, अपना पैसे का वसूल भी नहीं हो पाया, उसका जिंदगी भी खत्म और अपना भी धंधा चौपट करा दी। बेवकूफ लड़की।